0: Your news from here
1: and hits from home.
0: SBS South Asian.
2: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

Papus, papus, papus, papus.

0: Hits from Home.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: गज़लें तो शामिल ही हैं, मगर आज आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चैरिटी की फंडिंग या चंदा देने या जमा करने या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग किस तरह की जाती है, इसके क्या कानूनी तरीक़ेकार है। इस सिलसिले में आप एक मालूमाती पॉडकास्ट आगे चलकर सुनेंगे, और इसके अलावा आपको हम सुनवाएंगे चकवाल की कहानी। जी हाँ, आपने खबरों में ये अफसोसनाक खबर पहले भी शायद सुनी हो कि पाकिस्तानी नजाद एक 9 साल बच्ची जो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तानी पंजाब चकवाल में मौजूद थी, वहाँ चोरों की फायरिंग के क्रॉस पुलिस की फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर जान बहक हो गई है। इसकी बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं, तो आप इस सिलसिले में हमने बच्ची के वालिद जो ख़ुद भी ज़ख्मी हैं और अस्पताल में हैं, उनसे बातचीत की है, और सही सूरत हाल जानने के लिए उनसे बातचीत आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा आपको पाकिस्तान भी लिए चलेंगे, जहां पाकिस्तान की सालिसी से अमेरिका ईरान अमन माहिदा मुतवक्के है, और बजट पर पीपल पार्टी के तहफ़ुज़ात हैं। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात कशीदा हैं, और इमरान ख़ान की जेल से अस्पताल मुंतकली, ये सब मौजूआत का अहाता करेंगे पाकिस्तान रिपोर्ट में। और इसके अलावा भी बहुत से ऐलानात और अहम खबरें प्रोग्राम के हिस्सा रहेंगी। और वर्ल्ड कप का एक अहम मैच उर्दन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त जारी है, अगर उस वक्त तक कोई नतीजा आ गया, जब तक हम ये प्रोग्राम आपसे ख़त्म कर रहे होंगे, तो उसका जिक्र भी करेंगे। इसके अलावा भी फीफा वर्ल्ड कप की बहुत सी कहानियां हमारे वेब पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। लियारी की एक वीडियो स्टोरी भी बहुत ट्रेंड कर रही है, जो आप देख सकते हैं SBS उर्दू के इंस्टाग्राम पेजेस पर। मगर आइए पहले चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबरों का मुख्तसर बुलेटिन आपको सुनवाते हैं। सत्रह जून बरोज बुध की उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान और अमेरिका स्विस रिजॉर्ट बर्गन स्टॉक में बाजाब्ता तौर

अभी आप ताज़ा तरीन ख़बरें सुन रहे थे। ये मुख्तसर ख़बरों का बुलेटिन हम रोज़ाना आपके लिए वर्किंग डेज़ में लेकर आते हैं। सुपहर 3 बजे हमारे फेसबुक पेज पर भी ये पब्लिश होता है। और जो ख़बरें आपने सुनी उनमें एक डेवलपिंग स्टोरी थी वन नेशन की सरबराह पॉलिन हैंसन की प्रेस क्लब में तकरीर के बारे में, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें एक ये इजाफी नोट आपके लिए और मालूम के तौर पर शामिल कर रहे हैं कि वन नेशन की सरबराह पॉलिन हैंसन ने आज प्रेस क्लब में खिताब के दौरान जहाँ कई मौजूद पर इजहार ख्याल किया, वहां उन्होंने बरसर इख्तदार आने की सूरत में SBS को ख़त्म करने की पॉलिसी का भी ऐलान किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप की भी बहुत सारी ख़बरें हैं, जैसे कि अभी आपने अर्जेंटीना के मैच के बारे में सुना और मैसी ने 3 गोल यानी हैट्रिक की और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और इस वक्त उर्दन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच जारी है, और अगर मैच के खात्मे तक और हमें सूरत हाल मौसूल हो गई तो हम वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में बहुत

कुछ शामिल है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आप सुन सकेंगे कि चंदा देने या चैरिटी के कामों के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या उसूल व ज़वाबित हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी शहर चकवाल में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की तरफ भी ले चलेंगे और उस हादसे में जहाँ वाहक होने वाली 9 साल बच्ची के वालिद से आपको उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे। पाकिस्तान भी लिए चलेंगे और पाकिस्तान की सालिसी से अमरीका ईरान माहदे का जिक्र रहेगा। ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाकिस्तान के क्या हालात हैं उसकी बात होगी और इमरान खान को जेल से अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया, ये तमाम बातें पाकिस्तान रिपोर्ट में सुन सकिएगा। इसके अलावा भी कई मौजूदात का अहाता करते रहेंगे, गीत गज़लें और नगमे भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद। लेकिन वक्फा लेने से पहले क्यों ना आपको एक गीत की तरफ लिए चले। जी हाँ, ये गीत आपको सुनवा रहे हैं जो जिमी खान और रहमा अली की आवाज़ में है और इसका टाइटल है नदिया। और ये गीत 2017 में कोक स्टूडियो में बड़ा सुपरहिट हुआ था। लीजिए, आप भी सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कोक स्टूडियो सीज़न 7 के में नशर होने वाला एक बहुत मारूफ गीत जिसे जिमी खान और रहमा अली ने गाया था। ये 2014 में कोक स्टूडियो के सीज़न 7 में बहुत मकबूल हुआ था। अब एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुनिएगा और आज का मौजू है फ़ंड रेजिंग या चैरिटी के बारे में, जो चंदा जमा किया जाता है उसके ऑस्ट्रेलिया में क्या उसूल ज़वाबित हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान रिपोर्ट भी सुनवाएंगे और साथ साथ आपको चकवा पर्थ में रहने वाली एक उस ख़ानदान के वो सरबराह यानी वालिद अदील अहमद के इंटरव्यू भी सुनवाएंगे, जो इनकी बेटी चकवाल में एक पुलिस शूटिंग के दरमियान जाँ बहक हो गई।
1: SBS टीवी और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए, sbs.com.au/guide पर जाइए।
2: South Asian plays hit.

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: दुनिया भर से कशीदगी हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर। इनसाइड SBS का हालात हज़रा का अवार्ड याफ्ता शो उन जरूरतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
3: SBS Audio.
4: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
3: sbs.com.au/audio.
1: आप हैं SBS उर्दू की नशरियात के साथ और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे बहुत से ऐसे सेगमेंट होते हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते क्योंकि रोज़ाना हम आपके लिए कुछ फीचर्स और इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट और दिलचस्प ख़बरें लेकर आते हैं मगर प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है तो इसलिए अगर आप हमारा प्रोग्राम के कोई सी पॉडकास्ट को मिस नहीं करना चाहते तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं उनमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप sbs.com.au

0: उर्दू पर जाइए जहां हमारे तमाम पब्लिशुदा पॉडकास्ट आपको मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा हम फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं ये तमाम पॉडकास्ट और आर्टिकल और वीडियोस। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और यूट्यूब भी हम मौजूद है साउथ एशियन चैनल पर SBS उर्दू का, तो वो भी आप देख सकते हैं। मगर एक और तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन का, यानी हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मुफ्त मौजूद है एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए। आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको फ्री बिल्कुल इंस्टॉल कर लें और उस पर उर्दू लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके अपनी प्रिफर्ड या पसंदीदा लैंग्वेज बना लें। फिर आप हमारा कोई पॉडकास्ट मिस नहीं करेंगे और हमारा लाइव शो भी उस मोबाइल ऐप पर सुना जा सकता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन या खुश आमदीद ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अगर आप चंदा दे रहे हैं या ख़ुद रकम जमा कर रहे हैं या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अपील कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में खैराती और फंड रेजिंग का निज़ाम कैसे काम करता है। और यही मौजू है ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का, पेश कर रही हैं वरदा वकार।
1: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
2: सामईन, किसी ऐसे मकसद के लिए मदद करना जो आपके दिल के करीब हो, दिल को खुशी देने वाला महसूस होता है, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि कोई चंदा इकट्ठा करने वाला कानूनी तौर पर दुरुस्त काम कर रहा है और आप किस तरह चंदा इकट्ठा करने की तशहीर कर सकते हैं। खुशामदीद ऑस्ट्रेलिया की इस किस्त में हम आपको ऑस्ट्रेलिया के कानून जो चंदा इकट्ठा करने के बारे में हैं की वजाहत देंगे, ख्वाह आप किसी खैराती मकसद के लिए अतिया कर रहे हों या ख़ुद किसी नेक मकसद के लिए रकम इकट्ठी करना चाहते हों। ऑस्ट्रेलिया में चंदा इकट्ठा करने की कानून साजी को समझना मुश्किल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हर रियासत और इलाके के अपने कानून हैं। चंदा इकट्ठा करने वालों को मकामी हुकूमत की मंजूरी और दीगर कानून जैसे कि ऑस्ट्रेलियन सार्फीन का कानून और राजदारी के कानून का भी पाबंद होना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियन चैरिटीज़ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कमीशन यानी ACNC ऑस्ट्रेलिया के खैराती इदारों का निगरान है, जो यकीनी बनाता है कि रजिस्टर्ड खैराती इदारे अपने फराइज की तामील करते हुए जायज तरीके से काम करें। लेकिन इसकी चंदा इकट्ठा करने के तरीकों पर कोई बराहे रास्त नजर नहीं होती और ये हर रियासत या इलाके की जिम्मेदारी है। ACNC की कमिश्नर सो वुडवर्ड वजाहत करती हैं।
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have to follow, and these are state-based. So they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
2: रजिस्ट्रेशन के दौरान ACNC के साथ रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, लेकिन अगर कोई चैरिटी रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे गैर मुनफाती हैसियत हासिल करने और अच्छे निजामी मयार पर पूरा उतरने के लिए जांचा गया है। ACNC के कमिश्नर वुडवर्ड कहती हैं कि रजिस्टर होने की सूरत में चैरिटी की असनाद की जांच करना आसान होता है।
3: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
2: तमाम रजिस्टर्ड शुदा खैराती इदारे अतियात के लिए टैक्सेस की कटौती की रसीदें जारी नहीं कर सकते। जस्टिस कनेक्ट के नॉन फॉर प्रॉफिट लॉ सर्विस की वकील एमी विलियम्स वजाहत फराहम करती हैं कि अगर आपको किसी खैराती इदारे के फंड्स जमा करने के अमल से मुतालिक कोई तश्वीश है, तो आप अपने रियासती या इलाकाई निगरान इदारे के साथ ये मामला उठा सकते हैं।
4: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation, and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
2: अगर आपको किसी खैराती इदारे की फंड रेजिंग के तर्ज अमल के बारे में कोई तशवीश है, तो आप इसे अपने रियासत या इलाके के रेगुलेटर के साथ

परेशानी का बायस भी हो सकती है। और आपने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान में सफ़र के दौरान पर्थ का एक ख़ानदान मुबैना तौर पर डकैती का शिकार हुआ, जिसके बाद मुश्तबा डाकुओं के ख़िलाफ़ वो पुलिस कार्रवाई की जद में आया। वाकये में वालिद अदील अहमद और उनका बेटा तो ज़ख्मी हो गए, जबकि उनकी 9 साल ऑस्ट्रेलियन बेटी हानिया पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर अहले खानों को मुश्तबा अफराद समझने के बायस फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गई। पाकिस्तानी हुकाम ने आला सतही तहकीकात का हुक्म देखते हुए शफाफियत की यकीन दहानी करवाई है। ताहम SBS उर्दू से गुफ्तगू में अदील अहमद ने कहा कि पुलिस

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: से जो कि बच्ची के वालिद हैं और इस वक्त खुद भी जख्मी हैं और अस्पताल में दाखिल हैं, उनसे की गई बातचीत पर मबनी ये पॉडकास्ट सुनिए और ये इंतबाह कि इसमें कुछ मालूमात सुनने वालों के लिए तकलीफ देह हो सकती है।
2: पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर चकवाल फायरिंग वाकये में बेटी की हलाकत पर पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियन अदील अहमद का मौकफ सामने आ गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियन अदील अहमद के खानदान के साथ जिला चकवाल में पेश आने वाले अलमनाक वाकये के हवाले से SBS उर्दू ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। इसी बारे समाअत कीजिए कि अदील अहमद अपनी जुबानी इस अफसोसनाक वाकये को किस तरह बयान करते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है, मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरी बेटी थी आनिया अहमद जो 9 साल 2 महीने की थी, एक मेरा बेटा है

0: Hits from Home.
1: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: AK-47 से हमें मशीन गन से गोलियां मारी गई हैं। जो मेरी बेटी हैं, उनके जारी जो मैंने देखा, वो 3 से 4 निशान थे जख्म के, और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले वो शहीद हो चुकी थी। ऑल द पुलिस कह रही है कि वो हॉस्पिटल जाके शहीद हुई थी। नहीं, ये रॉन्ग है। वो ऑन द स्पॉट ही शहीद हो चुकी थी। हम जब घर आए, उसके बाद जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी, तो CCTV वालों ने हमें फॉलो किया। और लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र था कि मैंने संभव 2 गोली लगे हुई गाड़ी चला ली। लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हम पे फायरिंग की है। उसके बाद हम घर आए, मैं अंकल के घर पे किया जो मेरे फादर इन लॉ आए हैं। उन्होंने वहाँ से हमें वहाँ पे रेंडम मदे, तो उन्होंने हानिया को, मुझे, मेरी वाइफ को उन्होंने अस्पताल में छोड़ा, और बाकी बाद में मेरा बेटा जो था वो बाद में आता हॉस्पिटल में। ये सारी स्टोरी है की है। तो गवर्नमेंट ने हमारी सोफर कोई हेल्प नहीं की है। हमारे जो DPO हैं, उन्होंने 1-2 बार विजिट किया हमें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बिल्कुल ही ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCTV वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। कभी वो पहले उन्होंने बोला कि कुछ है ही नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक बंदे को चार्ज करेंगे। कभी वो कहते हैं कि हम Section 302 लगाएंगे, कभी कहते हैं 322 लगाएंगे, और उसमें भी ये क्या है कि वो उसको मिनिमम सज़ा पे रखना चाहते हैं। उन्होंने उसको सिर्फ डिसमिस किया है बंदे को, वो भी एक बंदे को जो शुड हैव बीन 2+। तो अभी तक ये स्टोरी है। लेकिन हम इनके ना यहाँ के इलाज से खुश हैं और ना किसी और चीज़ से खुश हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, कहते कुछ हैं, आके मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड कुछ और करते हैं। रही बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो मैंने रब्ता किया था कंसुलेट को, वो आए थे, हमें मिलने आए थे। किम भी आई थी, वली भाई भी आए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि वो कल दोबारा आएंगे मिलने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो रिकमेंड करके गए हैं कि ये हमारी लोएस्ट की लिस्ट है, इसके अलावा हमें कोई अभी तक हेल्प नहीं मिली है। हमें फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कोई GoFundMe पेज नहीं शुरू करना, ना हमने कुछ और किसी बंदे से हमें खैरात की ज़रूरत है। ऑल वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे साथ जो हुआ वो ये, इसको पोर्टल टू बेड किया जाए। जिस बंदे ने हमें मारा है, CCTV वाले ने, पुलिस वालों ने उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये वाकया रिपीट ना हो और CCTV वालों के इख्तियारात को कम किया जाए। दिस मैटर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। मैं उनको ईमेल भी करूँगा एंथनी एल्बनीज़ को, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हायर चैनल्स पे जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, उनको फ़ोन कॉल करें, उनसे मिलें, उनसे ईमेल करें। व्हाट एवर ही नीड्स टू डू, इट नीड्स टू बी डन प्रॉपरली, ताकि इस चीज़ को सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये इंतहाई इनकम्पिटेंट लोग हैं CCTV वाले। इनके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इनको कोई दिमाग नहीं है। इनको बस राइफलें दी हुई हैं, मशीन गनें दी हुई हैं, ये बस जो है ना, बस गोलियाँ चलाने के बाहर है, और इनके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा था वो मैं देख लिया था, उन्होंने CCTV वालों ने, CCTV दफ्तर के बिल्कुल पास ये बात हुई है, उनके भी कैमराज होंगे। उन्होंने मतलब कोई फुटेज अभी तक उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की है। ऑब्वियसली जो फुटेज मिली है अभी सो फार, वो हमें एक गली जो थी लोकल होम था वहाँ से मिली है। CCTV के अपने ऑफिस के बाहर डेफिनेटली फुटेज होगी, वो फुटेज पब्लिक को दस्तयाब होनी चाहिए कि उस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं वेट करता, चोर हमें लूट के जो चीज़ लेनी थी वो चले जाते, उसके बाद उन पर फायरिंग करते। जो जनरल पब्लिक है उस पर कैसे फायरिंग की गई है? एट दैट पॉइंट भी उनको ये नहीं पता था कि जनरल पब्लिक भी वहाँ पे है चोरों के साथ जो लूट रहे हैं उनको, और उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। इंतहाई अनप्रोफेशनल लोग हैं, इंतहाई अनप्रोफेशनल। जस्ट सो दैट इट इज़ क्लियर, जो फायरिंग शुरू की गई थी वो CCTV ने शुरू की थी, चोरों ने फायरिंग पहले शुरू नहीं की थी। ये 2 से 3 बंदे थे जिन्होंने हमें गोलियाँ चलाई हैं, और पहली फायरिंग CCTV ने की थी, और उसके बाद CCTV ने हमें गोलियाँ मारी हैं। ये गोलियाँ जो चोरों ने हमें बिल्कुल भी नहीं मारी। इसके अलावा एक बात और भी है कि CCTV वाले जो एहलकार थे उन्होंने हमें चेज भी किया है, उन्होंने हम पे गोलियाँ मारी हैं, पीछे से भी हमारे गाड़ी पे करते रहे हैं। लेकिन हमारी गाड़ी जो थी, हम जब मैं गाड़ी चला रहा था तो हम टर्न लेते रहे, तो उस वजह से हमने उनको डॉच कर दिया और उन्होंने हमें छोड़ दिया। अदरवाइज वो हम सबको कत्ल कर देते। उनकी ये इंटेंशन थी, जैसे उन्होंने गोलियाँ शुरू से मारी थी, वो एंड पे भी ये करते रहे हैं।

0: उन्होंने यही करना था। और एक बंदा हरगिज भी नहीं है, ये चार बंदे हैं, दो मोटरसाइकिल थे और इसका मतलब चार बंदे हैं और चार बंदों को एटलीस्ट चार्ज होना चाहिए।
1: सामीन, अदील अहमद की गुफ्तगू आपने समाप्त की। अदील अहमद अब शफाफ तहकीकात और इंसाफ के मुंतजिर हैं।
2: यहाँ यह एक याद दहानी कि ये इंटरव्यू इतवार 14 जून को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वाकया ये 10 जून को हुआ है चकवाल में। और इसके बाद काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि हमारे कायम करदा जवाबित से इनहराफ का कोई जवाब नहीं था और केस की हसासियत के पेश नज़र तफ्तीश अब मुकामी पुलिस से लेकर CCD के हवाले कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक मुकदमे का इंदराज दफ़ा 303 के तहत किया गया, ताहम अब इसमें दफ़ा 322 भी शामिल कर दी गई है। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। मुलजिम से सरकारी असलाह रिकवर कर लिया गया है, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए 16 जून को चकवाल केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। तो ये तो अब तक की डेवलपमेंट है और ये एक अफसोसनाक वाक़ है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है और इस सिलसिले में हमारी अपडेट्स और हमारी बहुत सी पोस्ट और वीडियोस आप sbs.com.au/urdu पर पाएंगे। इसके अलावा facebook.com/sbsurdu और instagram.com/sbsurdu पर भी एक रील भी मौजूद है और इंटरव्यू भी मौजूद है और इसका बारे में बहुत सी तफसीलात हमारे फेसबुक पेज पर पहले ही आपके लिए काफ़ी मालूमात फराहम कर रही हैं। इस सिलसिले में अगर आप में से कुछ लोग इससे किसी किस्म की मदद हासिल करना चाहें तो रेस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया पर जाकर मदद हासिल कर सकते हैं। और SBS की बाकी नशरियात के बारे में भी आपको आगाही दे दें कि हम लाइव स्ट्रीम और प्रोग्राम के मुंतखब हिस्से sbs.com/sbsurdu पर पेश करते हैं। आप हमें फेसबुक पर इनबॉक्स कर सकते हैं अपना मैसेज facebook.com/sbsurdu पर, और यहीं पर मिलती हैं वीडियोज़, अहम खबरों की डेली पोस्ट, तस्वीर के एल्बम्स, ब्रेकिंग न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया भर की कम्युनिटी खबरें। हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बिल्कुल मुफ्त मौजूद है। इसकी तफसीलात sbs.com.au/audio पर देखी जा सकती हैं। आइए इस वक्त आपको नासिर काजमी की एक बड़ी मारूफ गज़ल सुनवाते हैं जिसे ग़ुलाम अली ने गाया। इसके अलावा भी इसे बहुत से गुलकारों ने गाया जिनमें तसव्वुर खानम भी शामिल हैं, मगर इस वक्त जो गज़ल आपको सुनवा रहे हैं वो ग़ुलाम अली की आवाज़ में है और इसके बोल हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी।

अभी आप गुलाम अली की आवाज़ में नासिर काज़मी की गज़ल सुन रहे थे। एक वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं। SBS उर्दू की नशरियात में जब हम वापस आएंगे तो आपको हम पाकिस्तान लिए चलेंगे और वहाँ करंट अफेयर यानी हालात हाजरा की सूरत हाल के बारे में आगाही देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न पर जारी एक बड़ी मकबूल टेलीविज़न सीरियल का एक OST भी आपको सुनवाएंगे, जो इस सीरियल के साथ साथ खुद भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। ये सब कुछ एक वक्फे के बाद। दुनिया भर से कशीद की हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, फौरी खबरें, ऑस्ट्रेलियन और आलमी कहानियां जो आपके लिए अहम हैं। SBS वर्ल्ड न्यूज रोजाना शाम 6:30 बजे SBS TV पर या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। SBS चिल पर पूरी दुनिया की मूसीकी का लुत्फ उठाइए। SBS ऑडियो ऐप पर SBS चिल सुनिए।

0: दुनिया भर के लोगों की कहानियाँ देखिए SBS के अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री शो डेटलाइन पर। डेटलाइन हर मंगल को 9:30 बजे शब या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
1: SBS kickoff.
2: A new music station celebrating football anthems from around the world.
3: It's time for Africa.
1: It's live now
2: on DAB Radio, the SBS audio app.
3: We got the game
1: on. Online and SBS on demand.
4: SBS audio app आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। Google Play या App Store से SBS audio app मुफ्त हासिल करें।
0: SBS उर्दू की नशरियात में रिहान अलवी आपके साथ मौजूद है। इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं हालात हज़रा की तरफ। पाकिस्तान से सुनते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें जिक्र है अमेरिका ईरान के अमन माहदे की, इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकली की, और इसके अलावा पीपल पार्टी के बजट पर तहफ़ुज़ात और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कशीदा हालात का। ये सब सुनिए पाकिस्तान रिपोर्ट में।
5: SBS उर्दू के लिए इस हफ्ते की रिपोर्ट के साथ मैं हूं असगर हयात। सामीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी से जंग बंदी और अमन माहदा तय पा गया है। अमन माहदे पर दस्तखत जुमे के रोज जेनवा में होंगे। फ्रांस में जारी G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहदे की तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईरान जोरी हथियार हासिल करने में कामयाब नहीं होगा, आपने हुरमुज जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखतों की तकरीब का मेज़बान होगा।
6: जो इज्जत अल्लाह ताला ने आज अता फरमाई है जनाब स्पीकर, अपनी कमाल मेहरबानी से कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिली। अमन के क्याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए।
5: पाकिस्तान के वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान अमन माहदे को बड़ी सफारती कामयाबी करा दिया है।
7: 78 साल में इससे ज्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के खिलाफ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फतह अल्लाह के फजल थे। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया।
5: उधर पाकिस्तान के सिक्योरिटी राय का कहना है कि अमरीका ईरान मामले पर पाकिस्तान एक ऐसे इशू को डील कर रहा है जो बहुत पेचीदा है। सामीन, बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात दूर ना हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने एहतजाजन कौमी असम्बली में अपनी तकरीर मुलतवी कर दी है। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी के साथ मशावरत के दौरान जो तजावीज़ और आदाद व शुमार शेयर किए गए थे उनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमाया फर्क है। पीपल्स पार्टी मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब करेगी। उधर हुकूमत ने बजट की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राबता किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के सामने अपने तहफ़ुज़ात रखे हैं। कौमी असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट के मामले पर इसहाक डार से मुलाकात हुई है, आगे भी मुलाकातें होंगी। उन्होंने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पुरउम्मीद हैं।
8: हुकूमत हमारा ही है बजट पर तहफ़ुज़ात जो थे सर वो दूर हुए सर। हुकूमत ने वो जो आदाद शुमार
5: होगा उधर तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करा दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि बजट में अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला गया है।
9: जो किसान का हाल किया गया खैबर पख्तूनख्वा में उस असला में जहाँ टुबेको है, बिल्कुल किसान को क्रश करके रख दिया है। किसान जो है ना बेचारे रुल रहे हैं।
5: पाकिस्तान के सूबा पंजाब का 5,903 अरब उजम का बजट सूबा असम्बली में पेश कर दिया गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान ने शदीद एहतजाज किया और इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी की। सामने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे और हड़ताल 1 हफ्ते से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद जारी हैं। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत की जानिब से कल अदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रावलाकोट में दरेक के मुकाम पर धरना भी गुज़श्ता कई रोज से जारी है। धरने के शुरका यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद हैं। धरने के शुरका से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की रहनुमाओं की पुरजोश तकरीर का

0: सिलसिला जारी है।
1: हाथ उठाइएगा, लिखिए आते हो लफ्ता पे या पैसो
2: पैसा,
1: बीस दिन पे या पैसो
2: पैसा,
1: महीना रे या रेसो।
0: कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जम्मू कश्मीर के महाजरीन की नशस्तों के खात्मे और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए 9 जून से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। रियासती हुकूमत की जानिब से 5 जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देकर इसके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान रावलाकोट और कोटली में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तसादुम में 20 से ज्यादा मुजाहिरीन और 5 के लगभग सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि पुरतशद्दुद वाकयात में दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं। हुकूमत और कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुजाकरात का ताहाल आगाज नहीं हो सका। हुकूमत एहतजाज खत्म करने के लिए वजीद है, जबकि एक्शन कमेटी का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उधर वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि एक्शन कमेटी के मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद जारी था, लेकिन आखिरी नशिस्त में एक्शन कमेटी की जानिब से गैर हकीकी शरायत रखी गई।
3: गवर्नमेंट भी था और या फेडरल गवर्नमेंट भी और सारे लोग, हमने उनके साथ एक मुआहिदा साइन किया, 38 नुकात थे, उनके एक ही डिमांड सिर्फ वही जिसके लिए हमने कहा कि लीगल कमेटी है, आप उसके साथ बैठ जाए और बात करे।
0: उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के इंतजाम कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इंतखाबात पर वक्त होने चाहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान रिपोर्ट, और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मुख्तसर होती हैं, प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाती, उनको मुकम्मल सुनने के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर हमको फॉलो कीजिए। और नशियात यहीं पर अब इख्तिताम को पहुंच रही हैं, कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है और मैंने आपसे वादा किया था कि एक मोहब्बत और जो पाकिस्तान में इस वक्त ड्रामा सीरियल चल रहा है, माया अली और हजरत अमीर इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, उसका ओएसटी सुनवाऊँगा। तो चलते चलते शाह ज़ेब कपूर की आवाज़ में आप ओएसटी सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इस दुआ के साथ फिर मिलेंगे, गर खुदा लाया अल्लाह निकेबान।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Punjabi on mobile, online, and on radio.
1: Tusi SBS Punjabi naal mobile, online, ate radio dwara jude ho.
2: जी आयनु जी एस बी एस के पंजाबी प्रोग्राम में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। अज है जी दिन बुधवार जून महीने की 17 तरीक ते सिडनी तो मैं जसमीत कौर लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम। सारे सुन रहे स्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार आदाब ते हैलो जी। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असी उन्हां सारे परंपरागत मालकां नूं माण देना चाहुंदे हाँ जिन्हां दी धरती तो असी अज दा इह प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हाँ। पंजाबी प्रोग्राम कामा राय गलोकां ते उन्हां दे बुजुर्गां दीआं मौजूदा अते पिछलियां पुश्तां नूं सत्कार दिंदा है। असी उन्हां सारे रवायती मालकां अते आदि

0: सुनना पसंद करोगे? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जिथों भी तुसी अपने पॉडकास्ट सुनते हो।
1: प्यारे दोस्तों, मैनू लगता कि गल घूम फिर के मेहनत वल आउंदी आ। मेहनत नाल आमदन दे राह वखो वखरे खुलदे जांदे हन, ते ओ चाहे डिग्री जरिए होण या फिर किसी ट्रेड खेत्र दे विच होण। तुहाडा इस रिपोर्ट बारे की ख्याल है, मैं जरूर जानना चाहांगी। नंबर आ जी 0439-799-767, साडी लाइन खुली हुई आ, तुसी जरूर SMS लिख के भेजो ते दस्सियो कि इस रिपोर्ट बारे तुहाडे की राय हन। ते मेहनत तो ही सतिंदर सरताज दियां लिखियां कुछ सत्रां मैनू याद आ गईयां कि छड्ड दित्तियां जरबां तकसीमां, छड्डिया मनफी जोड़ कि मेहनत छड्डनी नहीं, भावें कुछ ना मिले ते भावें मिल जाए लख करोड़ कि मेहनत छड्डनी नहीं। ते जी हाँ, मैनूं लगदा मेहनत नाल ही सारा कुछ हुंदा है जी, ओह भावें किसे खेत्र दे विच वी होवे। ते तुसी भेजो जी इस दे उत्ते स्नेहा, ते मैं तुहानूं सुणाउणी आ अज दे प्रोग्राम दा पहला गीत। पेश है जी सतिंदर सरताज दा गाया गीत, मेहनत छड्डनी नहीं।

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर अते रविकिशन शामिल ने। 90 दा दहाका म्यूजिक प्रेमियां दे लई किसी खजाने तो घट नहीं सी। उस दौर विच एक गाना अजिहा सी जो दिल टुटन दी आवाज बन गया सी। सोनू निगम दी दर्द भरी आवाज अते गाने दे इमोशनल बोल ने इस नु अजिहा सुपरहिट बना दिता सी कि करीब 30 साल बाद भी इस दी पॉपुलैरिटी घट नहीं हुई है। ए गाना है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार।

0: बॉलीवुड गपशप विच अजे नहीं अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे और बॉलीवुड दियां ताजा खबरां लेके तद तक लई इजाजत।
1: प्यारे दोस्तों, अज दे प्रोग्राम नूं समेटण दा समां नेड़े आ रहा जी, पर इस तों पहलां एक सुनेहा आया होया जी, ओह पढ़ के सुनाउणा चाहांगी। सुनेहा भेजिआ जी सिडनी तों इकबाल सिंह जी, जसवीर कौर जी अते उहनां दे परिवार ने। ओह कह रहे कि इस प्रोग्राम दा समां पंजाबीआं दी लौडे वेले दी चाह नाल बहुत मेल खांदा है। असीं हर वार इस प्रोग्राम दा आनंद चाह दीआं चुस्कीआं नाल ही लैंदे हाँ। SBS दी सारी टीम दा धन्नवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह जी, जसवीर कौर जी अते तुहाडे पूरे परिवार दा कि तुसीं सानूं अज लाइव सुन रहे हाँ। उम्मीद आ कि तुहाडी चाह भी स्वाद बनी होगी, तो अज का प्रोग्राम भी तुसी पसंद किया होगा। पर दोस्तों, अज का प्रोग्राम जेकर तुसी लाइव सुनिया तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद है कि तुहानूं पसंद आया होगा। हसते रहो, मुस्कुराते रहो, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर साढ़े तक पहुँचाते रहो। मैनू जसमीत कौर नूं दिओ इजाजत, फिर मिलांगी अगले हफ्ते के SBS पंजाबी प्रोग्राम विच। पर तुसी सुनो अज के प्रोग्राम का अखीरला गीत, ये गाया जी अरनाज गिल ने, अरमान गिल ने, तो गीत का नाम है जी ब्रैथलैस।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के

की शुरुआत होगी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, निफा, जिसे न्यू साउथ वेल्स सरकार से 3 साल की फंडिंग मिली है। इसी के इम्पैक्ट और इसके मायनों पर हम बात करेंगे फेस्टिवल के एक समर्थक खुशाल व्यास के साथ। इसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें। फिर SBS एग्जामिन्स का एक खास अंश, जिसमें हम समझेंगे कि डिजिटल मीडिया, न्यूज़ और क्लिक कंटेंट का एंडलेस स्क्रॉल कैसे हमारी सोच और कंटेंट कंजम्पशन को बदल रहा है और एल्गोरिथम इसमें क्या रोल निभाते हैं। और अंत में SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का आज 5वां और आखिरी एपिसोड होगा, जो फोकस है ओवरसीज मनीज ट्रांसफर पर। अगर आपने कभी फैमिली को पैसे भेजे हैं या बाहर से कोई बड़ी रकम रिसीव की है तो ये एपिसोड आपके लिए खास तौर पर है। इसमें हम समझेंगे कि लिमिट क्या होती है, टैक्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग और ATO के कुछ बहुत ही ज़रूरी रूल्स जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते। तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी।

0: Hits from Home.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Steven.
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
4: उसका इलाज किया जाना चाहिए। विक्टोरिया में एक नया कानून स्टेट पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसके तहत बच्चों को गंभीर अपराधों के लिए भर्ती करने वाले एडल्ट्स को लाइफ इन प्रिजन तक की सजा हो सकती है। प्रीमियर जेसिंटा एलन ने कहा है कि ये कानून ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े उन लोगों को निशाना बनाता है जो कमजोर और असुरक्षित युवाओं का शोषण करके उनसे हिंसक अपराध करवाते हैं। विक्टोरिया की अटर्नी जनरल सोनिया किलकेनी ने कहा है कि ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज में बढ़ते उस ट्रेंड के जवाब में है, जिसमें क्रिमिनल नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बच्चों को अपराधों के लिए भर्ती कर रहे हैं और उनसे ऐसे अपराध करवा रहे हैं जिनसे समाज को बड़ा नुकसान होता है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उन लोगों को निशाना बनाने के लिए हैं जो इन अपराधों की योजना बनाते और उन्हें चलाते हैं, न कि उन बच्चों को जो इनका शिकार बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 15% वेतन वृद्धि लागू की जा रही है, ताकि चाइल्ड केयर सेक्टर में वर्कर्स की कमी को दूर किया जा सके। ये वेतन वृद्धि दिसंबर 2024 से धीरे धीरे लागू की जा रही है। इसे परिवारों के लिए फीस में बढ़ोतरी की सीमा से जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य वर्कर्स को लंबे समय तक बनाए रखना यानी स्टाफ रिटेंशन है। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि बेहतर वेतन से एजुकेटर्स को आकर्षित करने और उन्हें रिटेन करने में मदद मिल रही है। सरकार का कहना है कि जिन चाइल्ड केयर सेंटर्स ने ये वेतन वृद्धि अपनाई है, वहां उन सेंटर्स की तुलना में फीस में कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिन्होंने इसे लागू नहीं किया। नए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बाय नाउ पे लेटर सेवाओं पर सख्त नियमों से उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान पहले हो पा रही है जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी इक्विफैक्स के डेटा के अनुसार एक साल में फाइनेंशियल हार्डशिप की औपचारिक रिपोर्ट करने वाले बोरोवर्स की संख्या बढ़ी है। ये संख्या 0.06% से बढ़कर 0.24% हो गई है जब इस सेक्टर को नेशनल क्रेडिट लॉस के तहत लाया गया। नए नियमों से वित्तीय तनाव यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है और लोगों को समय पर सहायता लेने में मदद मिल रही है। साथ ही मिस्ड पेमेंट रेट्स में भी सुधार देखा गया है। डेटा के अनुसार बाय नाउ पे लेटर बोरोवर्स में फाइनेंशियल हार्डशिप की दर मॉर्गेज होल्डर्स की तुलना में कम है। ये दर बाय नाउ पे लेटर के लिए 0.24% और होम लोन्स के लिए 0.5% दर्ज की गई है। इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत ने उन आरोपों से इनकार किया है जो ग्लोबल सुमुट फ्लोटिला पर सवार ऑस्ट्रेलियंस ने लगाए हैं। उनका कहना है कि ये आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते। इस फ्लोटिला में शामिल 11 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गाजा के लिए सहायता पहुंचाने की कोशिश के दौरान इसराइल ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में एक आधिकारिक सबमिशन में शामिल होकर यह आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उन्हें टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस और अन्य दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसडर डॉक्टर हिलेल न्यूमैन ने ABC को बताया कि ये दावे झूठे हैं। और अब खबर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलेटरल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई चेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को फ्रांस में G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। भारत को 52nd G7 समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी आपने सुना न्यूज़ फ्लैश और अब शो को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने न्यूज़ फ्लैश से पहले कहा था कि आज हमारे पास शो में एक मूवी का गिव अवे कॉन्टेस्ट सवाल भी है, तो वो पहले पूछ लेते हैं आपसे। निफा जो नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है 2026, उस फेस्टिवल

0: में एक स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है बॉबी देओल की नई मूवी बंदर की, और ये जो कॉन्टेस्ट है ख़ास तौर पे मेलबर्न के सुनने वालों के लिए है जो मेलबर्न में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनिंग होने वाली है संडे को। और आपको सिर्फ ये बताना है कि जो फिल्म बंदर आने वाली है बॉबी देओल की, उस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, और आपको उसमें अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है। तो 04397997667 पर अपना जवाब भेज दीजिए। और यही कॉन्टेस्ट आज हमने दिन में शुरू किया था सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर, और कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं। कुछ लोगों जिन्होंने अपना जवाब भेजा है उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ कि जसलीन, सौरव, रिचि, संजीव, पल्लव और सिल्विया, इनके जवाब हमें मिल चुके हैं और काफ़ी और एंट्रीज आ रही हैं। तो जो लोग रेडियो पे सुन रहे हैं और जिन्होंने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट नहीं देखी है, तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और अपना जवाब भी भेजिए। 04397997667 कौन है बॉबी देओल की आने वाली मूवी बंदर के इस मूवी का डायरेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जब तक आपके जवाब आते हैं, और इसी फेस्टिवल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं। निफा यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया भर के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा कर रही है, और अलग अलग शहरों में इसके मूवी प्रीमियर्स हो रहे हैं। और न्यू साउथ वेल्स की जो राज्य सरकार है उसने 3 साल की फंडिंग भी अब इसे दी है। ऐसे में हमने चर्चा की है फेस्टिवल के समर्थक कुशाल व्यास के साथ और उनसे समझा है कि इस फंडिंग के क्या मायने हैं। आइए सुनते हैं वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
1: दोस्तों, नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी नीफा, जो कि अप्रैल में शुरू हुआ था और अब सिडनी में फिर एक बार है, लेकिन इस बार इसके पास एक कुछ खास बात भी है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के साथ एक 3 साल लंबा करार हुआ है नीफा का, जिसके अंतर्गत ये फिल्म प्रदर्शित करेगा हर साल। आज इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुशाल व्यास, जो कि नीफा से जुड़े हुए हैं और हमसे चर्चा कर रहे हैं कि अब तक का सफर कैसा रहा है और कितना जरूरी है ये सफर। कुशाल, सबसे पहले तो SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते विशाली।
1: कुशाल, क्या कर रहे हैं आप नीफा के साथ इस समय, और किस तरीके का अब तक का आपको लगता है कि नीफा का सफर रहा है?
2: विशाली, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ क्योंकि मैं गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी सब हिंदी पिक्चरों से समझ सकता हूँ, इसलिए इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ हिंदी में। तो विशाली, माय कनेक्शन विद नीफा इज लार्जली, आई वाज अ फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंडियन फिल्म काउंसिल, एंड आई एम इन्वॉल्वड इन वेरियस डिफरेंट रोल्स इन द ऑस्ट्रेलियन Indian community and broader multicultural scene. So with NIFA, honestly, my biggest role really is just as a supporter. And I'll be emceeing. I emceed the Sydney launch, and I'll be hosting the Melbourne program that's coming up tomorrow as well. The connection here is largely that I see as a supporter is honestly something where, as a person of the Australian Indian diaspora, I get the opportunity to actually see and support what impact that film has. I know what impact film has had on me. Maine kaha tha ki mera Hindi is only like even possible samajh sakta hu kyunki bahut Hindi picture dekh liya. So film obviously has an impact, and we want to see that film impact across the board, not just people of Indian heritage, but across the board and into other audiences in Australia as well. And so far, it seems like it's been

0: Hits from Home.
1: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: फिल्में नहीं देख पाते बल्कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो अपने सिनेमा अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को अपने ऑस्ट्रेलियन पड़ोसी से शेयर करें। हम आप भारतीय समुदाय के लोग तो घराती हैं, हमें बरातियों को बुला जो गैर भारतीय समुदाय के लोग हैं हमें उनको बुलाकर अपनी फिल्में दिखानी है। तो आप और हम तो हिंदी फिल्मों की चर्चा कर ही सकते हैं, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूं। लेकिन बहुत जरूरी है मेरे लिए कि निजी तौर पे व्यावसायिक तौर पे कि जो भारतीय नहीं है उनको मैं अपनी संस्कृति अपनी फिल्में अपने दृष्टिकोण के बारे में बताऊं, उसी से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं।
3: इसी चर्चा को जब हमने खुशहाल के साथ आगे बढ़ाया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
4: आप जब अपनी जनरेशन को देखते हैं और अब जिस तरीके का इंडिया एक्सपोजर है, दोनों ही सिचुएशंस में फिल्म्स को कितना इंपॉर्टेंट पाते हैं?
5: मुझे लगता है कि फिल्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस के आई एम नॉट वन दैट इज यू नो सुपर स्टार स्ट्रक इन दैट सेंस विद द एक्सेप्शन ऑफ शाहरुख खान इफ आई सॉ हिम आई'd बी वेरी वेरी स्टार स्ट्रक बट फिल्म इज मच मोर डीप देन जस्ट इट्स इंपैक्ट इन जनरल पॉप कल्चर एंड यू नो इन माय जनरेशन इन ओल्डर जनरेशंस इन यंगर जनरेशंस इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड इट्स अ बिग पार्ट ऑफ पीपल गोइंग आउट सीइंग वाचिंग स्टोरीज I think the impact, though, is for people of Indian heritage, it is a connection with culture because Indian film has become so much more mainstream in many ways or going in that direction. That connection with culture is becoming more significant, more accepted. They can feel more comfortable in who they are and celebrate a big part of that cross-cultural heritage in many ways. But I think the broader picture, both to Indians and non-Indians alike, is that film is about storytelling. It's about shared connection. And so you don't need to be Indian to watch an Indian film in the same way that you don't need to be German to watch a German film and so on and so forth. Humans connect with stories. And at a time where the world seems increasingly divided, film is that sort of connecting the conduit between different communities, understanding themselves better through storytelling. So I feel there's a much sort of softer power in film that gets talked about less, but is probably the most significant part of this entire thing.
4: Let's talk a little about New South Wales government supporting NIFA. जो New South Wales government का बिल्कुल अभी-अभी announcement आया है NIFA को support करने के लिए, कितना जरूरी है state governments का या regional powers का, regional governments का, local councils का इस तरीके के festivals को support करना, और आपकी opinion में NIFA बाकी के film festivals से किस तरीके से अलग रहा है?
5: बहुत इंपॉर्टेंट है, तो I'll divide that in two. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत इसेंशियल है, तो वो सब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और सब फेस्टिवल्स तो दे वुड से दैट, बट इट इज वेरी वेरी ट्रू. रीजन बीइंग के देयर्स ओनली सो मच वन कैन डू इन ग्रोइंग समथिंग फ्रॉम द आउटसेट. आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू नो अनुपम शर्मा इन द वर्क दैट इज डन टू ब्रिंग NIFA टू वेयर इट इज इन सच अ शॉर्ट टाइम दैट इट्स गॉन ट्रूली नेशनल. बट आई थिंक दैट विद गवर्नमेंट सपोर्ट इट इज एक्चुअली फाइनली शोइंग दैट गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स money where its mouth is. That you know hum sab suna hai ki australia india ka connection bahut important hai, or you know those sorts of speeches we hear very often, but it is very significant that the investment, the sort of support that could actually have an impact on the ground is had. And so this investment to see that the government values these sorts of festivals, that it values these contributions to the arts, is something that's to be congratulated. But it also means that it becomes sustainable. Ke ye sab, you know, ek do saal ke liye hota hai, phir we never hear from it again. This gives it actual sustainability to see that it continues and becomes a part of, you know, the New South Wales experience in many ways, you know, with this New South Wales government grant. So it becomes something that is looked forward to year in, year out. And the second part to your question was just about the regions. And I think this is a very important question and a very important part of what NIFA brings. We are obviously very lucky in metropolitan cities, okay? We have good exposure to various different cultures and various different experiences. Regional hubs often have very diverse populations and are very, very keen in exploring these sorts of connections, but have less accessibility to it. So the good thing about NIFA is, you know, it's gone to Dubbo, it's gone to Broken Hill, it's gone up to Darwin, it's going to all across the country, which means that we aren't just exposed

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS Audio.
2: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
3: यहाँ क्या होता है यार? चुनबे हाल में.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
2: 60 से अधिक भाषा में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
1: sbs.com.au/audio.
8: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एड ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब वक्त हो गया है इंडिया रिपोर्ट का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की कुछ खास खबरें.
9: पश्चिम एशिया तनाव और समुद्री व्यापार पर इसके असर का मुद्दा भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में उठाया है. फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित इस सम्मेलन के आउटरीच सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संबोधित किया. समुद्री व्यापार मार्गों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में की. हाल ही में अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी. वैश्विक सहयोग में समानता, साझी जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को आधार बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया. उन्होंने भारत के पक्ष को सामने रखते हुए कहा कि भारत मानवता सर्वोपरि के सिद्धांत को मानता है. आपको बता दें कि G7 दुनिया की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है. भारत को इसमें विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता है. सम्मेलन के इतर आज प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है. इस द्विपक्षीय वार्ता में बहुचर्चित व्यापार समझौते को लेकर चर्चा होगी. समझौते को लेकर ज्यादातर तकनीकी काम पर पहले ही दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है. इस बैठक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत की संभावना है. और अब चर्चा

0: नीट परीक्षा की, जिसको लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, जो मेडिकल छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, इसमें गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है। पिछली बार पेपर लीक के कारण 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बार कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर केंद्र सरकार सजग है। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। छात्रों की गूंज नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान के लिए आज राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं। यहां वे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। छात्र और उनसे जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार पर कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कोचिंग हब के रूप में पहचान रखने वाले कोटा शहर में हजारों छात्र रहते हैं। कार्यक्रम में छात्रों को आने से रोकने के लिए प्रशासन दबाव डाल रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इस बारे में कहते हैं,
1: जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी।
0: वहीं भाजपा ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहते हैं,
2: पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जहाँ तक ये नीच की बात करते हैं, तो ये आप सबको पता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ? केरल से। केरल में हमारा शासन नहीं था, वहाँ से शुरू हुआ। फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुणित अनुपात में लोग भेजते गए, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष?
0: छात्रों के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी भी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। व्यंगात्मक ऑनलाइन अभियान से शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी देश भर के शहरों में प्रदर्शन कर रही है। नीट और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मंगलवार को नागपुर में प्रदर्शन किया गया। इसके पहले जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अभिजीत ने इसके पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास को लेकर अभिजीत कहते हैं,
3: आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
0: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी का मुद्दा बड़ा और राजनीतिक बनता जा रहा है। अब इसकी जांच एसआईटी के हवाले है। संदिग्धों के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और पुजारियों से भी जानकारी ली जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
4: जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं, और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा?
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं,
5: भाई अगर संत हो, सबसे बड़े तो भक्त हो भगवान के, उसी के नाते गेरुआ बने हैं आप, उसी के नाते मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई बुलडोजर चलवाइए ना। जो चढ़ावा जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी, उसमें अभी तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? अब तक तो भारतीय की एंट्री हो जाती है ईडी की।
0: भाजपा ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य की भाजपा सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार और अपराध में कमी आई है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

0: राज्य की पहचान में सकारात्मक बदलाव आने का दावा किया।
1: अब यूपी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन से है।
0: उत्तर प्रदेश के बाद चर्चा महाराष्ट्र की, जहां राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुए टूट के बाद अब बारी शिवसेना उद्धव गुट की है। इसके 9 में से 6 लोकसभा सांसद बगावत कर सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। पार्टी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सांसदों को पाला बदलने के लिए बड़ी धनराशि ऑफर की जा रही है। इन सांसदों को पाला बदलने से रोकने के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद सक्रिय हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इंडिया रिपोर्ट के बाद अब वक्त हो गया एक एडब्रेक का, लेकिन एडब्रेक से पहले आज का जो कॉन्टेस्ट सवाल है वो एक बार आपसे फिर से पूछ लेते हैं। काफ़ी एंट्रीज आ रही हैं और अगर आपने अपना जवाब अभी तक नहीं भेजा तो आप ही भेज दीजिए। ये कॉन्टेस्ट है निफा से जुड़ा हुआ, यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ख़ास तौर पर ये जो मूवी टिकट्स हैं ये मेलबर्न के लिए हैं, तो अगर आप मेलबर्न से हैं तो ज़रूर अगर आप मैसेज में लिख देंगे कि आप मेलबर्न से हैं तो और अच्छा होगा। सवाल यह है कि बॉबी देओल की जो मूवी आने वाली है बंदर, उसकी उस मूवी के डायरेक्टर कौन है। आप अपना जवाब अपने नाम और ईमेल एड्रेस के साथ 04397997667 पर भेज सकते हैं। ये इस मूवी का प्रीमियर होने वाला है इस फिल्म फेस्टिवल में इस 21 जून यानी संडे को, और ये मेलबर्न में होने वाला है और 6 बजे शाम में इसका प्रीमियर होगा। तो अगर आप भी इसमें आना चाहते हैं तो डबल मूवी पास जीतने का मौका है। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि बंदर मूवी जो नई मूवी है बॉबी देओल की, उसके फिल्म डायरेक्टर कौन है। 04397997667 हमारा नंबर है। अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अगर आप मेलबर्न रहे हैं तो ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये ख़ास तौर पे मेलबर्न के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैटब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर कुछ गानों का समय हो गया है और कुछ आखिरी रिपोर्ट्स। बने रहिए SBS हिंदी पर।
3: इस विज्ञापन को एक नाटी प्रमाणित दुभाषिये ने अनुवादित किया है।
4: This ad is interpreted by a Naughty certified interpreter.
3: एक प्रमाणित दुभाषिये के साथ आप जो कहना चाहते हैं उसे हिंदी में ठीक वैसे ही कह सकते हैं।
4: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Hindi.
3: और आपकी कही हुई बात प्राइवेट रहती है और बदलती नहीं है।
4: And what you say stays private and unchanged.
3: क्योंकि हम सब का ये अधिकार है कि हमारी बात को समझा जाए।
4: Because we all deserve to be understood.
3: एक नाटी प्रमाणित दुभाषिये के लिए पूछें naughty.au/interpreter पर और अधिक जानकारी पाएं।
5: SBS News In Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
6: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
7: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब समय हो गया है एक गाने का। गाना सुनेंगे और बहुत ही आइकॉनिक गाना है और शाहरुख खान की मूवी का गाना है, वो हम सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें कि इस गाने के बाद हम वापस आएंगे और आपको लेके चलेंगे एक ख़ास रिपोर्ट में SBS एग्जामिन्स में, जिसमें आज बात होगी सोशल मीडिया स्क्रोलिंग की। तो उस रिपोर्ट का भी आप इंतज़ार करिएगा और ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको मिलता हूँ इस गाने के बाद।

0: SBS Audio app. We got the game online and SBS on demand.
1: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
2: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और गाने का वक्त हो गया है, और उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा कोई भी पॉडकास्ट पसंद आया है, कोई भी ऑडियो कार्यक्रम, और आप उसे एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है sbs.com.au/hindi, और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक करिएगा, जहाँ हम आपके लिए कम्युनिटी स्टोरीज़ लेके आते हैं और बहुत सारे मज़ेदार कॉन्टेंट और। चलिए मिलता हूँ आपको इस गाने के बाद।

आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया है हमारे शो के आखिरी रिपोर्ट का। आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं हमारी जो फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड। अगर आपने कभी भारत या विदेश में परिवार को पैसे भेजे हैं या विदेश से कोई बड़ी रकम प्राप्त की है या करने वाले हैं तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड आपके लिए ज़रूर है। इसमें हम समझेंगे कि विदेश में मनी ट्रांसफ़र की क्या सीमाएँ होती हैं, क्या

0: उन पर टैक्स लगता है, कौन से रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है और ATO तथा ऑस्ट्रैक के वो अहम नियम क्या हैं जो कई लोगों पर लागू होते हैं लेकिन अक्सर उन्हें पता नहीं होते। आइए सुनते हैं स्वाति शर्मा की तरफ से ये जो खास सीरीज है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स,
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
2: नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के द्वारा हमारी कोशिश है कि टैक्स सीजन से पहले हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारे समुदाय में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का विषय है विदेश पैसे भेजना और रिसीव करना और उसके क्या टैक्स इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमारे समुदाय में ये बात बहुत कॉमन है, जहां परिवार में अपने माता पिता को महीने महीने पैसे भेजे जाते हैं या फिर किसी भाई बहन की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसे भेजे जाते हैं, या कभी कभी इंडिया से पैसे मंगवाए भी जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची या फिर कोई विरासत में कोई गिफ्ट मिला। एक बेसिक सा रूल है जिसे जानना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज़ पैसे भेजने पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी पैसे भेज सकते हैं, पर तीन चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। एक, अगर एक ट्रांसफ़र $10,000 से ज़्यादा का है तो बैंक या रेमिटेंस सर्विसेज ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट ऑस्ट्रैक को करती हैं। ऑस्ट्रैक ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, पर यह सिर्फ मॉनिटरिंग का एक तरीका है। और दूसरा, अगर वो पैसा आपकी इनकम था या फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था तो उसे टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और तीसरा, अगर वो पैसा पहले से टैक्स पेड इनकम से आया है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, पर रिकॉर्ड रखना फिर भी ज़रूरी है। इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे आज पुनीत सिंह के साथ, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। तो पेरेंट्स या भाई बहन को इंडिया पैसे भेजना या फिर गिफ्ट भेजना, ये अक्सर हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है, तो बताइए कि गिफ्ट और इनकम में क्या फ़र्क है और क्या ये फ़र्क टैक्स के हिसाब से मैटर करता है और क्यों?
3: थैंक यू स्वाति जी। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वाति जी। हमें अक्सर आए दिन लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मुझे पैसे सेंड करने हैं, मुझे पैसे मंगवाने हैं। सो दिस टॉपिक इज़ क्वाइट रेलेवेंट फॉर अस। जब आप पैसे यहाँ से सेंड करते हो, अगर तो वो आफ्टर टैक्स मनी है, फॉर एग्जांपल आप अपना टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास सेविंग है उससे पैसा भेज रहे हो, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप लेट से आपकी 70,000 की इनकम है और नियरली आपने 1,10,000 ऑलरेडी भेज दिया हुआ है इंडिया में, तो देन समथिंग इज देयर। सो रेड फ्लैग वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपकी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूनियन, चाहे रेमिटली, एनी प्लेटफॉर्म, दे शेयर डेटा विद ATO विद ऑस्ट्रैक। सो वहीं से ये सारी जानकारी कलेक्ट हो जाएगी कि आपकी इनकम इतनी है, जो आपने डिक्लेयर की है थ्रू आउट द ईयर, आपने इतना भेजा है, सो दैट विल नॉट गोना मैच। सो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप आफ्टर टैक्स चीज़ें भेज रहे हो, आफ्टर टैक्स जो आपकी सेविंग है, शुडन्ट बी एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, देन यू आर डेफिनेटली इन हॉट वाटर।
2: तो अगर इंडिया से कोई बड़ी रकम रिसीव होती है, जैसे कि कोई इनहेरिटेंस है या फिर फैमिली की प्रॉपर्टी की बिक्री होती है, या कभी कभी पेरेंट्स भी गिफ्ट भेजते हैं, तो क्या उसे यहाँ डिक्लेयर करना ज़रूरी है और क्या उस पर टैक्स लगता है?
3: आपको डिक्लेयर नहीं करना स्वाति जी यहाँ पर, बट ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो उस इनकम के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो थ्रू आउट द ईयर, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और वो जो आपका बैंक होता है वो ATO को रिपोर्ट करता है कि थ्रू आउट द ईयर इतना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, एंड इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। अगर आपके फैमिलीज इंडिया से पैसा भेज रहे हैं फॉर सम रीज़न कि उनको इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करना है बच्चे को या बेटी को या बेटे को, तो उस पर टैक्स नहीं है। बट यस, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको कि यस, ये पैसा इंडिया से आया है, किस पर्पज़ के लिए आया है, एंड उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
2: तो जो लोग रेगुलरली पैसे भेजते हैं, कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें रखने चाहिए, जो ATO उनसे मांग सकता है?
3: सी, जब इंडिया से आप पैसे यहाँ पर मंगवाते हो, ठीक है, पहले तो ये चीज़ देखनी कि पैसे भेज कौन रहा है। अगर तो आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी ओके, एंड मेक श्योर आप उनसे गिफ्ट लेटर लिखवा लीजिए कि दैट दिस इज़ द गिफ्ट एंड दे आर नॉट टेकिंग दिस बैक, राइट। सेकेंडली, कई लोग अपना अकाउंट इंडिया में भी होता है, वो वहाँ से पैसा मंगवाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, मेक श्योर कि वो जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा या आया, उनके पास एक वैलिड रीज़न हो कि वो पैसा उनके अकाउंट में कैसे आया। क्योंकि अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेट से आपने इंडिया में प्रॉपर्टी सेल की है एंड वो आपने वहाँ पर पैसा इकट्ठा किया हुआ बट यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया हुआ, आपको वो रिपोर्ट करना होगा बिकॉज यू आर अ टैक्स रेजिडेंट। चाहे आपने ओवरसीज़ प्रॉपर्टी सेल की है,

0: आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। सो मेक श्योर वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। ATO 4 साल 5 साल पीछे भी जा सकता है अगर दे फाउंड आउट कि भाई आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ।
1: पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स में अब तक हमने बात की टैक्स सिस्टम के बेसिक से लेकर डिडक्शंस, साइड हसल्स, स्कैम्स और विदेश पैसे भेजने की। उम्मीद है इस सीरीज ने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे और टैक्स सीजन को थोड़ा आसान बनाया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस श्रृंखला के अब तक के सभी भाग आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। SBS हिंदी पर इस श्रृंखला को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की नई श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है। SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
4: SBS हिंदी पर आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे एंट्रीज भेजी हैं जो हमारा आज का मूवी कॉन्टेस्ट था और इसके विजेता अनाउंस होंगे कल के शो में, तो नज़र ज़रूर रखिएगा हमारे सोशल मीडिया पर भी और रेडियो शो को भी ज़रूर सुनिएगा। और ये मूवी प्रीमियर होने वाली है बॉबी देओल की निफा फेस्टिवल में इसी संडे 21 जून को, ख़ास तौर पर मेलबर्न में। तो विजेताओं के नाम कल घोषित रहे होंगे और फिलहाल मैं आपसे लूंगा अलविदा एक आखिरी गाने के साथ, स्वादी के साथ, कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।

नहीं बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: Non-stop Bollywood. Don't start.
1: The Bollywood session.
2: Don't stop.
1: On SBS South Asian.
3: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती हैं।

बेस लिप्स हिप्स सब सुपर फाइन मामा, शादी वादी करें फिर बच्चे करें नाइन मामा, ए तू भी दे दे थोड़ी लाइन मामा।

कक तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।